नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज अ सेकंड चेंजेस एवरीथिंग अ मिनट मूव्स अ नेशन एन आवर becomes history for three decades. NDTV has been there for the moments that were unstoppable, unmissable, unforgettable. Today, the moment is ours. NDTV 24/7 is now NDTV when it really matters.

0: professor, and they burnt effigies representing the accused faculty member and the university's internal complaints committee. Basically, the ABVP alleges that action was being delayed due to political influence and questioned whether the professor was being protected. 11 students have approached the university's internal complaints committee with allegations against a professor, including inappropriate conduct during viva examinations, sexually suggestive remarks, and according to the complaints, offers of higher marks in exchange for sexual favors. The allegations first surfaced after a student shared her experience in a students-only WhatsApp group following the viva examinations back in May. Other students then came forward with similar accounts, and the university's internal committee has begun proceedings and students have been asked to record their statements. Vikas Patel, the ABVP Joint Secretary, joined us on NDTV. Listen in to what Mr. Patel told us.
1: Now, Vikas Patel, ABVP Joint Secretary, is now joining me on the phone line. Mr. Patel, what do you make of this? Students protesting, and we are learning ABVP, your party, has only gone out and said that the professor has links with the Congress. That's why he's being shielded despite those sexual harassment complaints against him.
2: देखिए क्या है कि इस तरह की जो घटना है वो मई में आई थी और ये घटना सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसको सिटी प्लस जेएनएम बोला जाता है वहां घटना है और वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वाइवा में ऐसा मतलब कि जो सोशल मीडिया से ऐसा खबर आ रहा है और कुछ छात्रों से बात हुई है और इसका कंप्लेन जो हुआ था उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि वाइवा में ऐसे कुछ फेवर्स के लिए मतलब कि सेक्सुअल फेवर्स के लिए ऐसा बोला गया था और उसके अलावा कुछ ऐसे चैट्स भी हुए थे जिनका अभी एविडेंस तो हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं और तो ऐसे छात्रों से संपर्क में भी है लेकिन कोई छात्र डर के मारे सामने नहीं आ रहा है. ऐसे कुल 11 छात्रों ने आईसी में कंप्लेन किया था और विशाखा गाइडलाइंस के अंतर्गत जो बना है आईसी जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी हर इंस्टीट्यूट में होते हैं उन इंस्टीट्यूट को 90 दिनों के अंदर अपना जो इन्वेस्टिगेशन होता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट देना होता है और अगले 10 दिनों में देना होता है. अभी 4 महीने हो चुके हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और प्रशासन भी
1: 4 महीने हो चुके हैं
2: जी 4 महीने मई की घटना है और उसके बाद से ही अभी तक इस पर कोई प्रशासन भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है और जो आईसी में रिप्रेजेंटेटिव है वो लेफ्ट लेड ऑर्गेनाइजेशन से लोग हैं वो भी इस पर चुप्पी साधे हुए और ये पहली घटना नहीं हुई है. जेएनयू में इस तरह की घटनाएं होती रही है और जब भी इस तरह की घटना होती है तो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे जो जेएनयू के लोग हैं आईसी के इससे पहले जीएसपीएस में जो लोग थे वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे इस पे जजमेंट देते हैं और अपने कैडर्स के लोगों को बचाने का काम करते हैं चाहे वो फैकल्टी हो चाहे इनके कैडर के खुद के लोग हैं.
0: Well, on that note, let's turn our attention now to a shocking murder confession emerging from Guwahati where 25-year-old Riya Talukdar was killed by her husband Ramanuj Goswami. As Ramanuj Goswami was being taken to court, he has openly confessed to the killing, claiming he had no regrets and no apologies. He didn't stop there. He also threatened to kill the man he called his wife sugar daddy after he's released from jail. Police have alleged that the accused murdered his wife and then brutally mutilated her body. Riya's severed head was found inside a refrigerator at their home. Listen in to these reactions.
3: মাইকিক তো কাটিছো জেলৰ পৰা যদি ওলাব পাৰো জীৱনত এই সুগাৰ ডেডিকো কাটিম কেলে মনৰ একো দুখ নাই নো রিগ্রেটস নো অ্যাপোলজিস এখিনিয়ে কথা.
0: Well, on that note, we're slipping into a very quick break. We're back in a moment with the latest updates on how Apple is widely expected to unveil its latest iPhones. And reports suggest that this could be the moment Apple finally reveals its first ever foldable iPhone.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा प्योर मसाला।
7: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
9: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
10: Jab tak la jawab na ban jaye, usse nahi itminaan hai. Tabhi to Richmond banna nahi aasan hai.

0: of this is going to be taken into account. Now, more than that, the important point here is that Chief Minister has also ordered for a scrutiny of all the previous records of such buildings and PGs where illegal construction was done. And very importantly, she has asked the officers to in fact investigate that when and how these in fact illegal structures were built, who was responsible, because it is time that the Chief Minister is saying that the accountability needs to be fixed. Remember, Gargi, that this comes after the five officials from the MCD, in fact, they were suspended from the South Zone after the tragedy happened, the building collapsed, and seven innocent lives were lost. And we are continuously reporting from that site where the adjacent building is currently being demolished. You'll see the MCD team there already, you know, doing the demolition work, you know, layer by layer. You'll see the top floor, in fact, being demolished brick by brick. It is, in fact, falling down. And this after the entire building has been vacated. More than this, this demolition process is being taken in other PG hubs as well, be it Lakshmi Nagar, be it Ashok Vihar, be it Mukherjee Nagar. So all of these PG hubs where such kind of PGs exist, there the demolition drives is going to take place today. That is one of the strict directions that has come from the Chief Minister herself. Over to you.
1: All right, Ishika, as you said, you know, scrutiny on unsafe buildings in Delhi, and the Delhi Chief Minister ordering an audit and a crackdown on all such unsafe structures, illegal structures. We do know that buildings here were built on very narrow plots, five stories high. Even this boys' hostel that came down, it was known that there were structural issues. Work was going on in the basement at the time that the building collapsed, and this was during very heavy rain in the national capital. Ishika, as you've been saying, this has put the spot really on the situation of students who come from various parts of the country to study at Delhi University. Very few get, you know, hostel arrangements in the colleges they get admission to. In fact, there are 7 lakh enrollments in Delhi University. Just 8,000 hostel vacancies are available. So this, it's taken a tragedy like this to really put the spotlight on the situation of students who come to Delhi University. Many promises are being made in that regard as well. The Delhi administration is speaking to students to find out what they want changed. Students have spoken to us about how there is this PG mafia as well. So this is another issue. All right, going across to where the BJP president is speaking.
2: देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प और मैं कह सकता हूँ कि सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया. एक समय जब उन्होंने देश का नेतृत्व संभाला तो पूरे देश में एक निराशा, एक अंधकार का माहौल था. पॉलिसी पैरालिसिस हम कह सकते हैं. हमारे इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत दुनिया का तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भारत की अलग पहचान बनी, भारत की साख सम्मान में जो लगातार वृद्धि हुई, ये कहीं ना कहीं इसका परिणाम आज देश विश्व भारत की प्रभुत्व, भारत के सम्मान को जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में बढ़ा है, ये हम सबने देखा है. 37 देशों से अधिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया, ये कहीं ना कहीं ये सम्मान 140 करोड़ देशवासियों को उनके पुरुषार्थ का सम्मान है. आज जब हम उनके इस कार्यकाल की चर्चा कर रहे हैं, तो एक समय यह भी था कि इस देश में आतंकवाद के रूप में सामान्य जीवन को हमेशा अभिशाप के रूप में मिलता रहा. आम आदमी को आतंकवाद का डर, भय उनके मनों में हमेशा मस्तिष्क में रहता था, लेकिन उनके नेतृत्व में जहां हमने बाहरी और आंतरिक दोनों ही सुरक्षाओं पे देश के लोगों को सुरक्षित भी किया और देश के लोगों का मनोबल भी बढ़ाया। आज हर एक भारतीय अपने आप को सुरक्षित और सम्मान के रूप में आगे बढ़ा रहा है। हमने नक्सलवाद को उसकी जड़ों से समाप्त करने का काम किया और 200 से अधिक जिलों को जो प्रभावित जिले थे आज नक्सल मुक्त जिले के रूप में पूरी तरह से आम जनजीवन के जीवन की तरह आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को एक पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया। अगर आज हम देश के युवाओं की बात करते हैं तो जहां एक ओर देश का युवा निराशा के वातावरण में था, उसको आशा और उम्मीद के वातावरण में लाकर खड़ा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से किया। और हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप के माध्यम से, यूनिकॉर्न के माध्यम से, जहां भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बना और स्टार्टअप और यूनिकॉर्न में हमारे युवा आगे आकर केवल जॉब सीकर्स नहीं जॉब गिवर्स बनकर उभरे। और हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि आज भारत खेलो इंडिया के माध्यम से, फिट इंडिया के माध्यम से भारत का युवा हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रहा है। कल तक बात होती थी वुमेन डेवलपमेंट की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात को आगे लाया और आज बेटी बचाओ से लेकर बेटी पढ़ाओ से जो सफर का शुरुआत हुआ वो आज लखपति दीदी तक पहुंचा। और हम कह सकते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से देश की महिलाओं को उसका अधिकार और नीति निर्धारण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास हमारा चल रहा है। इन सब के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का सशक्त भाव सेवा का रहा है। गुजरात से जो सफर उन्होंने शुरू किया, नर्मदा बांध के माध्यम से गुजरात के लोगों को घर घर तक पानी पहुंचे, ज्योति ग्राम योजना के माध्यम से गांव गांव तक बिजली पहुंचे और वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से गुजरात इन्वेस्टमेंट से लेकर निवेश के रूप में अलग सेक्टर से आगे बढ़े, पूरा एक विजन उन्होंने गुजरात के लोगों को दिया। और हम कह सकते हैं कि गुजरात का जो ग्रोथ रेट रहा वो अपने आप में सभी राज्यों के लिए एक कंपिटिटिव मॉडल बना और केवल गुजरात के शहरों को नहीं गुजरात के गांवों को भी विकास करने का संकल्प को उन्होंने पूरा किया। हम जब आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया और उस आपदा की घड़ी में जब पूरा देश कोरोना के कालखंड में खड़ा था तो उसमें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना दी, वोकल फॉर लोकल की कल्पना दी और कहीं ना कहीं पूरा देश उससे जुड़ा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात करें, मैन पावर से मैन्युफैक्चरिंग पावर की बात करें, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर की बात करें, कृषि विभाग से कृषि और किसान कल्याण विभाग की बात करें, स्पेस सेक्टर की बात करें। मैंने आज इन सेक्टरों की चर्चा इसलिए की क्योंकि जब आप उनके पूरे कार्यकाल को देखेंगे तो इन सेक्टर्स में किस प्रकार से उन्होंने ग्रोथ किया, किस प्रकार से देश को अग्रणी भूमिका में लाने का प्रयास किया वो हम सबके सामने है। लेकिन उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। अगर मैं आज उस दिशा में कहूं तो हम कह सकते हैं जब इस देश को क्षेत्र और वर्ग में बांटने की बात हुई उन्होंने ज्ञान के रूप में गरीब युवा अन्नदाता और नारी के को समान अधिकार रखकर उनकी सामने रखकर योजनाओं का निर्माण करने की बात कही। मैं मानता हूं ये ऐसी सोच थी जो हर एक भारतवासियों को जोड़ रहा है। आज जब एक समय था हमारी सीमाओं के गांव को लोग कहते थे कि हमारी सीमाओं में जो पढ़ने वाले गांव हैं वह अंतिम गांव हैं, उन्होंने उसकी परिभाषा को भी परिवर्तित किया, उन्होंने कहा वो हमारे प्रथम गांव हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सोच बदलाव की बात है, मैं मानता हूं कि ऐसे उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है। मैं मानता हूं कि जन सेवा और समर्पण के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। हमने अगले एक महीने में सेवा संकल्प अभियान का कार्यक्रम का निर्माण किया है और 17 सितंबर 2026 से 17 अक्टूबर 2026 तक हम पूरे एक महीने सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इसकी सबसे पहले कड़ी में 17 सितंबर को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है उस दिन को हर वर्ष हम लोग सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं और पूरा कार्यक्रम हम सेवा पखवाड़ा के रूप में करते हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो पूरे जीवन को अगर हम देखेंगे तो जहां उन्होंने सेवा के भाव से समाज को जोड़ते हुए हर अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचे और उनको हम मुख्य धारा में कैसे लेके आए इसका उन्होंने प्रयास किया, इसलिए उनके जन्मदिन को हम लोग सेवा दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं और इस वर्ष भी इस रूप में ही मनाएंगे। विभिन्न कार्यक्रमों का जो आयोजन होगा उसमें पार्टी कार्यकर्ता जनमानस को साथ लेकर हम इन कार्यक्रमों को सफल करने का प्रयास करेंगे। प्रथम दिन 17 सितंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा जो हर साल हम लोग करते हैं और इस साल भी हमारा मानना है कि रक्तदान महादान के रूप में हम इस कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे और हमारे युवा हमारे समाज के हर वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसी दिन 17 सितंबर को शाम में 7 बजे आशीर्वाद का दिया। इस पूरे कार्यक्रम का स्पष्ट उद्देश्य है कि पिछले 25 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निष्ठावान जनसेवा की है उसके प्रति आभार व्यक्त हम जन आशीर्वाद सामूहिक प्रदर्शन के रूप में करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम का जो उद्देश्य प्रत्येक परिवार विशेष करके हमारे जितने लाभार्थी रहे हैं उन सब के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद स्वरूप ये दीप जलाए जाएंगे और ये दीप इस बात का प्रतीक होगा कि जहां एक ओर जनसेवा के प्रति उनके आभार व्यक्त करेगा वहीं विकसित भारत 2047 के विकसित संकल्प को भी प्रदर्शित करेगा। 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान हर साल हम लोग करते हैं, इस वर्ष भी पूरे इस कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान को भी हम उसी रूप से करेंगे। इसके बाद मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा के माध्यम से जो पिछले सेवा और समर्पण के जो 25 वर्ष रहे हैं इसमें विकसित भारत के कल्पना जैसे विषयों को लेते हुए हम लोग पूरे इस एक महीने के कार्यक्रम में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच में सभी स्कूलों में चित्रकारी ड्राइंग और भाषण प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसमें उत्कृष्ट चित्रों को और भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर और अन्य हमारे केंद्रीय मंत्री के स्तर पर उनका प्रमाण पत्र देने की योजना है। नमो सेवा अन कही कहानियां, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 25 साल के कार्यकाल रहे हैं इसमें कई एक के जीवन में बदलाव आया है और कई ऐसे योजनाएं रही हैं जिन योजनाओं का असर समाज के हर वर्ग को मिला है। उन योजनाओं को भावनात्मक रूप से संगीतपूर्ण नाटक और नुक्कड़ नाटक के रूप में प्रस्तुत करने की योजना है जिसको हर गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। आंगन मिलन सेवा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा दीवियों का सम्मान हमेशा किया है और उसी विषय को देखते हुए हम लोगों ने भी आंगन मिलन सेवा का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसमें आंगनबाड़ी के अपने बच्चे उनकी माता से जुड़ी मोदी सरकार की पोषण स्वास्थ्य और महिला संबंधित योजनाओं की जानकारी उनके साथ साझा की जाएगी, साथ ही साथ उनके बीच में मनोरंजन की गतिविधि के अन्य कार्यक्रम हर आंगनबाड़ी केंद्र पर करने की योजना हम लोगों ने ली है। साथ ही साथ सेवा की कहानी, विभिन्न योजनाओं से हमारे लोगों के जीवन में जो बदलाव आया है उन जीवन के जिनके जीवन में बदलाव आया है वो उनकी कहानियों को भी हम एक प्लेटफॉर्म देंगे जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश और दुनिया को हम बता पाएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल से कितने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में जो बदलाव आया है उसको ये कार्यक्रम सेवा की कहानी के माध्यम से हम लेके आएंगे। सेवा ज्योति कलश यात्रा, विकसित भारत का संकल्प। 7 अक्टूबर 2026 को जिस दिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का जनसेवा समर्पण के 25 साल पूरे होंगे, उस दिन देश भर के सभी जिलों में सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से हम कार्यक्रम करेंगे। इस कार्यक्रम में जहां 25 वर्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाएगी, वहीं इस कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में पदयात्रा, बाइक रैली, साइकिल रैली के माध्यम से हम सभी हरेक जिला के मुख्यालय पर जमा होंगे और वहां इस संकल्प को लेंगे। देश भर के सभी जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त करीब 1000 स्थानों पर विकसित भारत का सामूहिक संकल्प लिया जाएगा। इसके साथ साथ युवा मोर्चा के माध्यम से एक अलग यात्रा का भी प्लानिंग हम लोग के बीच में है। इसमें दो यात्राएं निकलेंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म स्थान वडनगर से आज के उनके जो कर्म भूमि है बनारस, तो वडनगर से बनारस के बीच में सेवा यात्रा निकलेगी और उसी प्रकार से बनारस से वडनगर के लिए भी सेवा यात्रा निकलेगी। ये यात्रा 10 अलग अलग टोलियों में निकलेगी और ये पूरी यात्रा में का नेतृत्व हमारे युवा करेंगे। प्रत्येक टोली में 50 युवा साथी हमारे होंगे जो पूरे कार्यक्रम के रूट में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य जहां हटकेश्वर महादेव वडनगर में जो हमारे स्थान है, वहां से काशी विश्वनाथ दोनों ही स्थानों पर जलाभिषेक करके ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे चौपाल में रहने वाले गांव में चौपाल में रहने वाले लोगों से संवाद करना, आंगनबाड़ी केंद्रों के लोगों के साथ संवाद करना, किसानों के साथ संवाद करना, हमारे शहर के जो युवा क्लब्स होते हैं उनके साथ संवाद करना, इस प्रकार के करीब 7-8 कार्यक्रम प्रत्येक दिन ये टोली करेगी और ये करीब 20 यात्राएं अलग अलग रूट से करीब 10 राज्यों से होकर गुजरेगी। इन सभी 10 राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम की टोली बनाई गई है और इन सभी कार्यक्रमों को ये टोली अंजाम देगी। 20 दिनों की इस यात्रा में प्रत्येक दिन 5 से 7 कार्यक्रम करने की योजना है। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना, जनता का फीडबैक लेना, चौपाल के माध्यम से जनसंवाद और सरकार की विभिन्न योजनाओं की जो उपलब्धियां रही हैं उसकी भी चर्चा करने का कार्यक्रम इस यात्रा के माध्यम से होगा। साथ ही साथ सेवा मेरा योगदान। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपना योगदान इस देश के विकास में देना चाहिए और इसी के तहत सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में जन भागीदारी के माध्यम से 25 विभिन्न थीम पर, उसकी 25 अलग अलग विषय हैं, उन विषयों पे हर व्यक्ति से आग्रह किया जाएगा कि उस सेवा मेरा योगदान में अपना समय श्रम दान के रूप में, मन दान के रूप में दे। इस पूरे कार्यक्रम को, सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम को हम क्या परिवर्तन लाए हैं, पहले क्या था और आज की स्थिति में हम क्या परिवर्तन ला पाए हैं, इस तरह से हर व्यक्ति अपना श्रमदान कम से कम देगा और सभी लोगों से ये उम्मीद की जा रही है कि 25 मिनट का कम से कम श्रमदान वो दे। इसमें करीब 25 अलग अलग कार्यक्रम लिए गए हैं। हर व्यक्ति जो आम जनमानस से इसमें हम अपील करेंगे कि उनके भी योगदान से इस देश के विकास में योगदान मिले, परिवर्तन आए, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम लिए गए हैं। इसमें समाज के जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लिया गया है जिससे में वो अपने जुड़ाव के साथ काम कर सकते हैं। सेवा सेतु अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर शिविर कैंप आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं रही हैं उन योजनाओं के क्रियान्वयन को अंतिम रूप देने का, और हम मानते हैं कि जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति तक वो योजनाएं पूरी तरह से पहुंचे, तो जितने भी हमारी योजनाओं के लाभार्थी अगर कुछ बचे हैं तो उनको हम ब्लॉक स्तर पर उसी दिन आवेदन लेकर समय सीमा के अंदर उन योजनाओं को उनको देने का काम करेंगे। साथ ही साथ इस शिविर में स्वास्थ्य शिविर भी और अन्य योजनाओं की जानकारी का भी कैंप लगाया जाएगा। सेवा के रंग राष्ट्र के संग, देश के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर मानव समूह रंगोली के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाएं, राष्ट्रीय प्रतीक, विकसित भारत के संदेश, ये सब को प्रदर्शित करते हुए ये ह्यूमन रंगोली बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कलाकार, महिला बहने, हमारे स्वयं सहायता समूह की बहने, विद्यार्थी और व्यापक स्तर पर जन भागीदारी के माध्यम से ये कार्यक्रम किया जाएगा। इस मानव समूह रंगोली को मुख्य रूप से जो सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विभिन्न योजनाएं हुई हैं उनको भी इस ह्यूमन रंगोली में प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाएगा। एक विशेष कार्यक्रम सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज भी हम लोग ले रहे हैं, देश के युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए और कॉरपोरेट इनोवेटर्स के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को लिया है। इस पूरे कार्यक्रम को इनोवेशन चैलेंज के रूप में आयोजित किया जाएगा। राज्यों को ये कहा गया है कि आप अपने राज्य के कुछ इनोवेशन चैलेंज को आप निकालिए, जो हमारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो इसमें भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और पूरी तरह से इसमें कई शिक्षण संस्थानों को, स्टार्टअप नेटवर्क्स को और इनक्यूबेशन सेंटर्स को जोड़ा जाएगा और उनको ऑनलाइन आवेदन लेकर इसमें भाग लेने के लिए आग्रह किया जाएगा। चयनित इनोवेटर्स के राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाएगा और जहां उनकी लाइव प्रदर्शनी, लाइव डेमो और युवा संवाद के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा और इसके विजेता को पुरस्कृत भी करने की योजना है। हमारा आखिरी कार्यक्रम सुशासन संवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। हम कह सकते हैं कि जब 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन के बाद से जन हमारे जो पंचायती स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे निकाय स्तर के, उनको जो सहभागिता मिली है योजनाएं बनाने में, क्रियान्वयन करने में, तो कहीं ना कहीं आज सरपंच से लेकर हमारे मुखिया और वार्ड के सदस्य तक ये मानते हैं कि एक निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्होंने इन जनप्रतिनिधियों को जोड़ा है। और हम मानते हैं कि जब 25 साल प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के पूरे हो रहे हैं तो हम उन जनप्रतिनिधियों को भी सम्मानित करने की योजना बना रहे हैं और इसके तहत हम लोगों ने सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक के कार्यक्रम को आयोजित करने की योजना बनाए हैं और ये कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प प्रस्ताव के रूप में होगा और इसमें हमारे सभी जन प्रकार के जनप्रतिनिधि शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम को पूरे देश में 4 से 5 भागों में अलग अलग स्थानों पर करने की योजना है। तो ये पूरे कार्यक्रम जो मैंने आपसे आज चर्चा किया है, ये कार्यक्रम करोड़ों लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भावना रही है उसके अनुरूप इस कार्यक्रम को हम लोगों ने डिजाइन किया है और हमारा मानना है कि हमारे कार्यकर्ता, आम जनमानस इस कार्यक्रम में शिरकत करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम समाज में भी भेजने का प्रयास करेंगे और हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी के जो 25 साल हैं वो ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है और हम कह सकते हैं कि आज देश और दुनिया में हमारे नेतृत्व का जो सम्मान है वो देश के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने इस रूप में लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सबके माध्यम से भी ये कार्यक्रम जनमानस तक जाएगा।
3: कुछ पत्रकार साथियों के हम सवाल ले पाएंगे। आमोद राय जी,
4: बाप रे,
2: मैं आपको पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेतृत्व वर्ग 24/7 काम करता है, तो हम लोग तो फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं, तो इसलिए तो हमारे कार्यक्रम, हमारी योजनाएं निरंतर भाव से चलती हैं और उसी क्रम में, चाहे उत्तराखंड हो, यूपी हो, मैं बंगाल भी इसी महीने जाने वाला हूं, तो ये हमारे कार्यक्रम निरंतर भाव से चलते रहते हैं।
3: अवन गॉड।
4: संजय जी, आजकल नारा

0: Ragi and Sudhanshu until August 2025. He further revealed that the PG operators Sudhanshu and Shubham used to play with him, the payment was nearly around 1 lakh rupees per month. Meanwhile, 5 people have been arrested in the case, including the owner, his wife, son, the labour contractor overseeing the repair work. And with that, let's shift our focus to more stories that we are tracking. And this is about the Vande Mataram row, which has reignited. It is back in focus. And this time, it is the Congress versus its own ally, the National Conference. The National Conference has hit out at the Congress party and said that as an alliance partner, Congress cannot decide the terms to sing Vande Mataram. Hitting back at the National Conference, it was the Congress party, which said that as an alliance partner, they should say and they should learn what to say and they should not be following the RSS agenda. The war of words came after Congress has appealed to ally National Conference to sing only the two stanzas adopted in the year 1937, arguing that the full version sits uneasily with India's pluralist and secular ethos. Meanwhile, the BJP has jumped in. They have slammed the Congress and stated that it has been totally isolated on the issue, pointing out that even its allies have no objection to the full version. The BJP has gone ahead a step further, accusing the Congress party of echoing Jinnah's outlook. Many more reactions coming in on that story. Let's listen in.
1: Film festival mein वंदे मातरम गाया गया और उमर अब्दुल्ला जी वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला जी वहाँ पर सम्मान दे रहे थे, तो हमारा यही मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला जी इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो कांग्रेस के फैसले का सम्मान करेंगे, ना कि वो नागपुर के फैसले का सम्मान करेंगे।
2: अलायंस पार्टनर, अब इस मामले में अलायंस के साथ क्या ताल्लुक है कि कौन सा हिस्सा गाना है? जब कहीं किसी स्टेज के ऊपर इस पर बात होगी तो बात करेंगे। उनका अपना ट्वीट है, वो ट्वीट करने के हकदार हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोई भी चीज़ किसी के ऊपर, अलायंस पार्टनर के ऊपर भी ठोंसी नहीं जानी चाहिए।
3: कश्मीर से किसी पॉलिटिकल पार्टी को परेशानी नहीं, कश्मीर से किसी नेता ने, हालांकि कश्मीर से किसी अलगाववादी तत्व ने भी इसका विरोध नहीं किया। लेकिन एक बात जो समझ नहीं आती, जो गले से नहीं उतरती, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके महामंत्री संगठन केसी वेणुगोपाल जी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके उमर अब्दुल्ला को एक नई नसीहत और कोलेशन धर्मा, इंडिया ब्लॉक का कोलेशन धर्मा की निभाने की बात की है। मुझे समझ नहीं आता कांग्रेस को आपत्ति क्या, परेशानी क्या है आपको देश के प्यार में।
4: एक राष्ट्र की चेतना है, यह एक ऐसा उद्घोष है कि जिस मंत्र को बोलते हुए हिंदू हो, मुसलमान हो, सारे जाति के लोग फांसी के तख्ते पर चढ़े। इस कारण वंदे मातरम का सम्मान राष्ट्र सरोपरि इस भाव से होना चाहिए, और वही सम्मान फारूक अब्दुल्ला जी ने दिया। अब वे इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, उसके जो नेता है राहुल गांधी, उनका रवैया कुछ और है। तो जो भी वंदे मातरम का सम्मान करता है वो इस राष्ट्र का सम्मान कर रहा है, वह हमारे शहीदों का सम्मान कर रहा है जिन्होंने शहादत दी इस देश को आज़ाद करने के लिए, उनका सम्मान कर रहा है। और उसके विपरीत लोग कहीं ना कहीं हमें आज़ादी दिलाने वाले उन देशभक्तों का अवमान कर रहे हैं।
5: इट इज शेमफुल एंड सरप्राइजिंग दैट इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग नेशनल सॉन्ग एंड अप्रिशिएटिंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर standing up for the national song, singing the entire national song, K. Venugopal of Congress condemns the Abdullahs, people of Jammu and Kashmir, saying that they should only sing two stanzas of the national song. There can't be more disrespect to the nation than what Congress is doing today. And it somewhere sounds like Venugopal ji wants Kashmir to sing Jeeve Jeeve Pakistan. In India, if we will not sing Vande Mataram, what else will we sing?
6: Mr. K.C. Venugopal's prejudiced remarks about our national song, Vande Mataram, only echoes a Jinnah-like bigoted communal outlook that has plagued the Congress party despite Parliament's reason

0: आपको उम्मीद है कि आपके भाई को न्याय मिल पाएगा?
1: सर उम्मीद की बात नहीं है, अभी 3 दिन हो गए, 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, पर कुछ भी, जब हम, मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, जब अधिकारी अपराधियों का, वांछित अपराधी है, उनका एड्रेस, उनका घर सब कुछ पता है, मैं सिस्टर हूँ अमित की, ठीक है, जब आपको सब कुछ पता है तो कार्रवाई तेज क्यों नहीं हो रही? ये सिर्फ कहने का मतलब है, भाई मेरा चला गया सिर्फ इस बात में कि आप वहां बाथरूम ना करो, ये कहना अपराध है? इतना आप बताइए, जब पुलिस को सब कुछ मालूम है उसके बाद अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? सिर्फ इतना जाने, अगर अननोन होते तो ठीक है, पुलिस को हम समय देते हैं, जब पुलिस को सब कुछ मालूम है, इतने बड़े अपराधी हैं, वो उनका घर यहाँ है, वो ना कोई दबिश ना कोई कुड़की, और सीधा मुख्यमंत्री से सिर्फ एक अनुरोध है मेरा, प्लीज कुछ भी करिए, आप बुलडोजर चलवा लिए उनके घर पे, चाहे उनकी हत्या करवाइए, जैसे मेरा भाई मरा है, हमको इंसाफ चाहिए वैसा ही हो, बस और कुछ नहीं चाहिए।
0: आपको
1: उन्होंने पूरे उसमें सिर्फ मेरा भाई था जो पूरा कर रहा था, सारा सब कुछ समेटे था, पूरे परिवार को, पूरे समाज को, अभी मेरी मदर की 1 महीने पहले मौत हुई है।
0: मीना जी, बहुत मतलब इस वक्त आप लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उन्होंने जो गलत लगा उसको बोला, आपको लगता है कि इस घटना के बाद लोग डरेंगे उत्तर प्रदेश में कि किसी भी तरीके से अगर आपको कुछ गलत दिख रहा है तो चुपचाप बैठे रहिए, वरना आपका भी हाल आपके भाई जैसा हो जाएगा?
1: बिल्कुल डरेंगे, क्यों नहीं डरेंगे, जब एक साधारण सी बात पे आप मार सकते हैं इंसान को, तो कैसे कोई बोलेगा, आप बताइए। इसीलिए लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती, बलात्कार होते, लोग देखते नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है कि वो बोलेंगे तो वो मारे जाएंगे, पर और कुछ नहीं होना, हर इंसान अपने परिवार के लिए डरता है, आप ये सोचिए ना, सब कुछ होता है, क्यों क्यों छूट जाते हैं लोग, इसीलिए छूट जाते हैं ना, क्यों, गवाही देने को कोई तैयार नहीं होता है, हमारे पास तो रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, सारे प्रूफ हमने दे दिए, उसके बावजूद आप सोचिए ना, 3 दिन बीत गए,
2: जी
1: ये अपराधी पता नहीं हो, अपराधियों के नाम पता नहीं हो, उनका घर नहीं पता हो, तो हम मानते हैं आप पुलिस को हम समय दे रहे हैं, जब सब कुछ मालूम है तो उसके बावजूद क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है?
0: बहुत दुखद घटना है, किसी के परिवार के ऊपर इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए किसी, और हम उम्मीद यही करते हैं कि सरकार और जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं वो इसे देखेंगे और आप लोगों को जल्द से जल्द इस पे न्याय मिले। अमित के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, कम से कम एक ऐसा एग्जाम्पल ज़रूर सेट होना चाहिए। हमारी संवेदनाएँ आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। वाई आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस स्टोरी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बिकॉज like I said, are we even fit to be called a civilized society? Should we live like, you know, bura mat dekho, bura mat suno, bura mat kaho? Is that how people are supposed to live? Why in the smallest of the things, when you see somebody urinating on the streets and you tell them not to do that, should that cost you your life? That's the country, that's the society that we are living in. A quick break, I'm coming back, stay tuned.

0: Free. Do you think that an episode like this might have any impact? आपको लगता है कि इसका असर बाकी चुनाव पे भी हो सकता है?
1: देखिए वसुधा, जो कांग्रेस ने यहाँ किया, मुझे लगता है उत्तराखंड के लोग या उत्तराखंड की जनता किसी कीमत पर कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। ये देवभूमि उत्तराखंड है, देवभूमि अतिथि देवो भव के लिए जानी जाती है, और देवभूमि में कहते हैं यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, और देवभूमि में जातिवाद की राजनीति होती ही नहीं थी। यहाँ कोई जानता ही नहीं था कि खड़गे जी दलित हैं, और खड़गे जी को अपनी पार्टी के नेताओं के मुंह पे भी जन्नातेदार तमाचा है तमाम कांग्रेसियों के उन नेताओं के ऊपर जो ठाकुर और ब्राह्मण होके खड़गे जी के पैर छूते हैं। अगर उनको लगता है कि उत्तराखंड के लोग ये जातिवादी राजनीति करते हैं, तो मुझे लगता है उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की सभ्यता का अपमान है। उत्तराखंड के लोग, गरिमा जी सामने बैठी है, जानती हैं यहां मन्नान लगाया जाता है, और मन्नान में देवताओं को अवतरित कराया जाता है। जब देवता अवतरित कराने वाला, देवताओं को बुलाने वाला उसके समीप, उसके बराबर रखा जाता है यहाँ अनुसूचित जाति के लोगों को, जो हम जिनको हम ढोल बजाने वाला कहते हैं। हमारे यहाँ वार्ता की जाती है, वो समाज उसको ऐसे पूजते हैं जब वो शादियों में आते हैं, जैसे पिठाई लगाते हैं ब्राह्मण की पिठाई लगाते हैं, ऐसे ही उसकी भी पिठाई लगाते हैं। मेरे प्रदेश के अंदर ये दलित अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं है, लेकिन किसी कीमत पर, लेकिन किसी कीमत
0: Garima, respond to that quickly.
2: The BJP spokesperson, do they agree with the purification controversy which happened? Do they agree with it?
1: I'm coming to your point. Let me speak.
2: Should such things happen?
0: Let him respond. Let him respond, Garima. Shadab Shams, yeah.
1: Listen.
0: Shadab Shams, respond to it.
2: No. Then don't talk here and there.
1: Why are you rambling now? Wait a minute.
0: Shadab Shams, respond. I'll come to you, Garima.
1: Yes. देखिए, मैंने बहुत ईमानदारी से कहा कि ये झूठ का सहारा ले रहे हैं। जहां एक तरफ ये देवभूमि उत्तराखंड देवताओं की भूमि है, वहीं यहां महासू देवता और गोलजू देवता भी हैं। यहां न्याय के देवता हैं। झूठ बोलने वाले का वो हश्र होता है, सोच भी नहीं सकते। यहां आके झूठ बोलते हो, बताते हो
0: गरिमा, रेस्पॉन्ड नाउ, या गरिमा रेस्पॉन्ड,
1: हाई कोर्ट ने तमाचा मारा है।
0: Tushar Gupta,
3: Vasudha, we've been discussing this for a while, and I've always maintained that an investigation must go into what the Congress was claiming. If that happened, that is unacceptable. The Constitution doesn't allow for it. The law doesn't allow for it. An investigation should have happened. The Congress should have filed an FIR on day one, not just in Uttarakhand, even in Karnataka. You know what's the interesting thing about elections, Vasudha? Every political party is both a victim of casteism and a savior against casteism. It's only the state they choose to play their idle politics. In Uttarakhand, the Congress gains absolutely nothing by playing out this narrative that Kharge ji was insulted or whatever was done in the name of Shuddhikara. But in Uttar Pradesh, this narrative will play out to appease the SC voters. Similarly, for the BJP, I do not see them incurring any damage in Uttarakhand because of this, but perhaps in Uttar Pradesh they will have to go out and convince certain community of voters that this doesn't happen. So when you talk about political narratives and you're still 6 months away from election, this savior versus victim, this narrative is going to be played out repeatedly, and the Congress would like to focus on caste politics, because what they have learned from 2024 when they were in alliance with the Samajwadi Party in Uttar Pradesh is, if they can consolidate the upper caste vote and do a bit of gerrymandering within the Dalit vote and the OBC vote, they actually have a good chance of breaking some inroads into the BJP assembly seats. That is the politics they're going to go for, and that is what is being done in preparation of that. It's that simple. Right. Everyone is a savior.
0: Tushar Gupta is pointing out to something very important. मुझे ये समझना है कि ये जो counter FIRs हुए हैं राहुल गांधी पे, ये किस कारण हुए हैं? Because I'm not able to understand if he's seeking justice for something that happened. Either there should be an investigation, and you say that, you know, nothing like this happened, but why is there a counter FIR against him?
1: बताता हूँ। पहले तो हाई कोर्ट ने, वसुधा आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट ने, कांग्रेस ने जो याचिका दर्ज की थी, इनके पास कोई प्रूफ उसका नहीं मिला है कि इस तरह का किसी ने शुद्धिकरण किया है, और जाति के आधार पे क्या

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा प्योर मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, every day.
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
10: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, R pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
11: Dr. Roma, manual winding, 4 logon ke paas hai.
12: Kuch isse bhi anokha.
11: Kamla pasand, sirf ek anokha swad. Kamla pasand paan masala.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्यन मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, everyday.